लेकी जलिए रो तन सगे सगे सगे सगे दिन से नू ये कपूर सुई कपूर सुई कपूर सुई गम्य इलाफ़ न ले जाए.

Rama Tripurani Tanu, Vidita Sakala Sansar, Kaushik Suno, Banda Ihman, Kutila Kala Vasa Nijakula Kala, Tuma Hata Kahu Jo Chaha Ubara, Kahita Tapa Bala Rosho Hamara. Sura Samada Karani Karahi, Kahina Janava Hiya, Nityamana Rana Payani, Kaya Rana Karahi Pralam. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु नकुल हि प्रसंसि कालहु डरहि न रण रघुवंशि विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल परसु